0: अला हे दिल याली हम आला दिले वेले ई खाती हाले हम आला दिले आले खाती आला हे के दिले मेला बाहले हेले वेले वसुत बड़ा अडरवाली बाहे मेने ले थे मा खाती लाले सोए नवतल दे अशुद्ध बल यीशु फ्रांस के नाम में फले आओ
1: देखे मा खाती दा वे तेरे वे
0: ई हम आला के दियाले हम आ
1: तेरे वे दे दे रवाती दा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबर सुधी वेवा स्वामी इन बात से उदाउ कराने के लिए कनाट